तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माही सुनकै जमके दूत नाय तेरा छड जाहे भौजल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल सुमाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे सलोक महला पंजवां अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतियां दरगह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम कांडी है विरले के महला पंजवां रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनोह ना विसारियन साध जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दोस्त खिन माहि बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड

0: सुनिहार सत्रियाकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी भुला चुका जी के मां अवस्कार हो भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पासों पावन पवित्र चल रही लड़ी वार कथा सरवण करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी धन गुरु नाम धन

सहसा मूल न हुवई, सब चिंता विचहु जाय, जो किछ होय सो सहजे होय, कहना किछु न जाय।

अब नासे पुरख पाया परमेश्वर वह सोभ कंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है। राह गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत डहल की बेला। इहां काट चल हो हर लाहा आगे बसन सुहेला। आवत घटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए भी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हो हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पा

आपन आप आप उरत हरय तौ सगन आप सगन कहा विचार है। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपने गत जानो आप। जह अशल अशेद अपेद समाया ऊहा किस व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेहो गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथा है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप्रच्यो प्रपंच आकार तेहो गुण में किनो बिसथार। पाप पुन तय पही कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तौ नानक एक है। जह अबगत भगत तह आप जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहू पाक का पे तनी उनकी शोभा उनहू बनी। आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन ना लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार। आपे एको आप बिसथार जा किस पावे ता श्रेष्ठ उपाय। आपने पाणे लय सुमाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए। आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए रू सो समदर्सी तत का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कै हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है किस कोई न मार। सो मुआ जिस मनो बिसार किस तज अवर कहाँ को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जन हो साथ।

द्रौपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतर चिंद, आस अनित त्याग तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहाओ नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमूलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उदार, आप तर लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लाका हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रीन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तहारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचीत, सुखमने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मल ताकी कर्म, सब ते ऊच ताकी सोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी सोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

सब तुज कही जय। कोट इंद्र इंद्रा साही सहन गणि जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। त्व सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयाचंद।

अकर्मं नमस्तं अकर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजिते नमस्तं अपिते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाधे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुविक्कय नमस्तं अनित्यय नमस्तं अभूते नमस्तं अजूते नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्धूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अतापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्तजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवे नमस्तं अपेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तंगाभरणे नमस्तंगमरणे नमस्तंजरारं नमस्तंकृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहिमे नमस्तं करिमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपूकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंद त्वे प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजेय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रचंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदानी नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाते नमो पान पाने नमो बाद बाते अनंगी अनामी समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेकीय परमी अपोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे

साष्टांग नमो पुप पुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो उर्ध अर्धं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं वचेदीयपेदीयनामंग कामं स्मस्तोपराजी स्मस्तस्ततामं तेराजोर्चाचरी चंग जले हैं तले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीश हैं भुजंग प्रचंद आगा

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो। आप हाथ दय मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

श्री अस तुझ जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत पल पावै सोई दुख नत सैब आपत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नरके रह हो जो याकि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस तीन कही जय भाद्र सुदी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सु

जन भए सरसे पूरे गुर ते जान। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए ते बहादुर सिमरै

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख पते बिरद की पैज।

चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे रखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो हे निमाणे।

धन धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसों पातशाह की आत्मक जोत साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा तार जियो आप जी ने रहमत कृपालता कीती बख्शिश कीती अमृत वेले दे जागने बख्शे अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर आईया समूह संगतां नूं दर्शन दीदार दे करके नदरो नदरी निहाल कीता आप जी का कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन सुंदर दीवान सजे सजे दरबारा अंदर आप जी की अमृत मई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नित नेम बाणिया दे पाठ होए गरीब नवाज आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां आप जी ने खिमा कर देनिया के तू सावधानता बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दे योग आप बना लेना सतगुरु जीओ बेअंत संगता ने आप जी के पावन पवित्र चरण कमलां दी अमृत वेले हाजरी भरी तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच भेट कीती रहमत करनी समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दरते प्रवान करनियां किरत कमाईयां सफलियां करनियां घरां परिवारां बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरसिखी दी दात विद्या दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करके नवाजना बेअंत संगतां वल्लों मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरियां गईयां सेवावां भेजियां गईयां तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाए पाउणियां समूह संगत दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान कर लैणियां गरीब नवाज अपने टहलियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु जीओ काम क्रोध लो मोह हंकार तों बचा करके शरदा भावना सहित अपने दर कर दी सेवा आप ले लैनी गरीब नवाज रहमता करनिया हर मैदान फते बख्शिश करनी सदा अंग संग वर्तन आप जी की कृपा सदका चार पहर रहन सुख पाणी अंदर बतीत हुई है दिन आया है अपने पाणी अंदर सुखमई आनंदमई बतीत करवाना सतगुरु जी इस वक्त दीवाना दी संपूर्णता नूं मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो जी रहमत करो पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके दर आईयां संगतां दी गरीब नवाजी करो जी पावन दरबार सजाउण दी आग्या होवे सही प्यारे मेर जिन्हां मिलिया आप जी

0: वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हौ तिस पह आप वेचाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु प्यार दा सदका मितां प्रति गुरु दरबार दियां हाजरियां भरदे हो। सतगुरु जी कृपा करन सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन। दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। पावन दीवाना दी संपूर्णता ते सतगुरां ने अमृत वेले दे इलाही जो हुक्म जो फरमान बख्शिश कीते सन, आप जी ने सरवण कीते हन। सोही राग विच धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा पावन शब्द अष्टपदियां दे रूप अंदर दर्ज है। सतगुरु धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी ने समुचे शब्द अंदर जो भाव दस्या है कि गुरु दा सिख, गुरु दा प्यारा, जिसनों परमेश्वर दे दर्शनां दी तांग है, वो दर्शनां दे लई हर कीमत अदा कर सकता है। वो वाहिगुरु दे दीदार लई, अपने गुरु दे दीदार लई, अपने गुरु दे मिलाप दे लई अपने जीवन तक दी बाजी ला सकता है। दुनिया दे हर दुख नू, हर संकट नू, हर मुश्किल नू, हर रुकावट नू वो हस के पार कर लैंदा है। जिहदे अंदर परमात्मा नू मिलन दी तांग होवे, मिलन दी भुख होवे, उस नू वाहिगुरु परमात्मा आप वो रस्ता देंदा है। जिवें किसे इंसान नू प्यास लगी होवे, कोई भुख लगी होवे, तो अपनी प्यास नू, अपनी भुख नू मिटाण वास्ते कोई आहर कर लैंदा है, कोई ढंग लभ लैंदा है, कोई किरत लभ लैंदा है, क्योंकि भुख बड़ी डाढ़ी दुख है। उसनू मिटाण दे लई बंदा कोई ना कोई काम जरूर करदा है, लभदा है, उहदी लोड़ बन जांदी है। जदों कोई भी चीज़ लोड़ बन जाए फिर वह लोड़ दे विच मनुख आप राह कढ लैंदा है। इसी तरह जदों सिख दे मन अंदर यह भावना बन जाए भी गुरु दा दीदार करना, गुरु दे दर्शन करने, संगत करनी ये मेरी लोड़ है, मेरी जरूरत है, जिवें प्यासे नू पानी दी लोड़ है, भुखे नू भोजन दी लोड़ है, इस तरह सिख नू गुरु दे प्यार दी, गुरु दे दर्शनां दी लोड़ है, जरूरत है, तां फिर उह सिख हर मुश्किल विच रस्ता लभ लैंदा है। जे जरूरत महसूस नहीं हुई फिर भावें अनेकां सुख दे साधन भी बंदे दे कोल होण, सारा कुछ मुहैया होवे, बंदा फिर भी ना मिलण दे, ना दर्शन करन दे बहाने भाल लैंदा है। ये सब कुछ अपने मन की खेड है। गुरु कृपा करे सिख नूं गुरु सदा अपने दर्शन बख्शता रहे, दर्शन परसन बख्शता रहे, अपनी संगत बख्शता रहे, अपना प्यार बख्शता रहे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ प्यार सहित अमृत बाणी आसा की वार दे कीर्तन भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों सरवण करिए जी। भुला चुकां दी खिमा, समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु, वाहिगुरु।

ये बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही अष्टपदिया

0: की फतेह। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पह आप वेचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा कर है त सतगुर मेल है हर हर नाम त्याई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: औसत का योग शासन जी महाराज कृपा की आप सकता बड़ी श्रद्धा भावन सहित अमृत लैके महाराज निजी उदरों दवाद आशा की वाले सपून कीते शर्म किए ने परंतु अज हुक्मनामे की कथा चार शर्म की है। सात संगत जी हुक्मनामे शर्म किए हैं अरदास हालियां भरिया ने सात संगत जी। इस पास में गुरु साहब ने आप गुरु खातर बख्शिश किया है और सात श्री आप संगत ने पता है कि लड़ीवार सहज पाठ चल रहे हैं। भाई साहब ठीक 10 बजे तक आप लड़ीवार सहज पाठ शर्म कराने तो घर बैठ कर संगत पाठ कर रही ने आप उन्होंने बेनती है भाई रजिंदर सिंह का जरूर संपर्क करो ताकि वह समय सर जिन्हें प्रोग्राम चलने वो तुम संपर्क करके अपना सारा प्रोग्राम जो दसनगे कि किस दिन किस तरीक में असं की करना किमें चलना है जो सा सारा प्रोग्राम जो असं इस किमें इकट्ठे होकर संपूर्ण करना है। सो उन्हों का टेलीफोन नंबर है 408-712-4145। सो जरूर इस नंबर से कॉल करने की बात करो। बाकी सत्संग संगत को बेनती है कि तुम देख रहे हो जो गुरु घर के नारसार सोलसार डबल बिल्डिंग बन रही ने सत्संग जी बेअंत खर्चा हो रहा है बेअंत परिवारों वालों सत्संग जी माया गुरु घर वास्ते भेटा की है वो विभागी हैं। बाकी जिन्हें अज तक अपना दशांश सफल नहीं किया सारे बेनती है सत्संग जरूर कृपा करके अपना दशांश सफल करो गुरु घर माया भेटा करके गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। सत्संग जी अपने बेनती है कि खालसा स्कूल के दाखला खुला है गुरु नानक खालसा स्कूल का गुरु घर सहन जी। सो आप संगत को बेनती है कि जरूर तुम ऑनलाइन अपने बच्चे दाखिल कराओ ताकि बच्चे पंजाबी पढ़ सकन पढ़ के गुरबाणी पढ़ने अरे गुरसिखी न जुड़े जाएंगे साढ़े सारे वास्ते बहुत जरूरी है। सत संगत जी आपने जरूर कृपा करनी है। सत संगत जी अगस्त 17 है संग्रांत भादों के महीने से अपने हाजरियां भरनिया ने तो सत संगत जी आप संगत बेनती है जरूर बच्चे दाखिल कराओ। तो अगस्त 27 है जन्मदिन प्यारे भाई दया सिंह जी का अपने हाल जी भरने सत संगत जी। सो सत संगत जी अगस्त 3 है सपूर का दिवस गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी संपूर्णता पुरब कहो सत संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी संपूर्णता पुरब जो है वह है अगस्त 27 अगस्त 3 है संपूर्णता पुरब गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का अपने हाल जी भरनी ने सारे संगत ने बेनती है कि 30 जरूर आओ जो गुरुबाज ने चे पातशाह जी ने साढ़े वास्ते महानदास बख्श की है असं उसका सत्कार करते हैं गुरु साहबां दे चरणा धन्यवाद करिए। सत्संग जी सितंबर 3 है कॉलेज प्रोफेशनल क्लास चल दिया ने उसके वास्ते आप संगत ने हाल जी भरो। तो सत्संग जी हमें संगत ने बेनती है भाई साहब तैयार ने वो पाठ आराम करे शरण करिए। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो नेम सहित अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। आओ अज पावन अंग 883 तो श्री सहज पाठ आप अगे प्रारंभ करने हन। प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हैं 883 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

तौ दरगह सुख पावहु संतहो ऐसी कथहु कहानी। सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी। रहाउ परपंच छोड़ सहज घर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुर मिलहु नवै निध पावहु इन बिद तत बिलोई। परम चुकावहु गुरमुख लिव लावहु आत्म ची नहु पाई। निकट कर जानहु सदा प्रभ हाजर किस स्यों करहु बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। धन धन से जन जिनी कल मैं हर पाया जन नानक सद कुर्बानी। राम कली महल्ला पंजवां। आवत हरक न जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया तौ उतरी सगल बेउगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग न व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी। रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखौ हर गुणी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहा निवासा जह अविगत नाथ अगम धनी।

नानक हम तुम गुर खोई है, अंबै अंब मिलोगनी, राम कली महल्ला पंजवां, त्रै गुण रहत रहै निरारी, साधिक सिद्ध न जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर कै खजाने, आचार्य किछ कहण न जाई, बस्त अगोचर भाई रहाओ, मोल नाही कछ करणे जोगा, क्या को कह सुनावे, कथन कहण कौ सोझी नाही, जो पेख है तिस बने आवै।

अनिक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत ना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण हुए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ न कत हो जाता बरन न साकों जैसा तू है साचे अलक अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महल्ला पंजवां।

तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मेहमान कलाला। तुम देव हो तिल संक न मानहु, हम पुंच हैं सदा निहाला। हम बारिक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा। हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सद गुणी गहीरा।

मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए राम कली महल्ला पंजवां। कर कर काल पखावज नैन हो, माथे वजहर बाबा करनो मद बासुरी बाजै, जिहवा धुन आगा जा निरत करे करमनुआ नाचै, आने घूगर साजा राम को नृतकारी, पेख पेखन हार दयाला जेता साज सीगारी। राव आखार मंडली धरन सवाई, ऊपर गगन चंदुआ पवन विचोला करत अकेला, जल ते ओपत हुआ पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दुए चर जरे चरागा, चह कुंड पीतर राखे दस पातों पंच संगीता, एक है पीतर साथी

दिन राती घट घट वाजै तूरा एक नचावह एक पवावह एक आए जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर न नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली।

सहज आनंद दिखावे भावे इहो नृत्यकारी जन्म नायावे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद इहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला पंजवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवै गुसैया कोई अल्लाह कारण करण करीम कृपा धार रहीम रहाओ।

कोई उड़ नील कोई सुपेद, कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बाछे पिस्त कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महल्ला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करहु बिचारा, एहो तौ चलत भया रहा, अगली किछ खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सिधाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ न मर न जोग, नह बिनसै अबिनासी होग, जो एहो जान हो सो एहो नाहे, जानन हारे कौ बल जाओ, कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै न आवै जाया। राम कली महल्ला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवह, फिर ना खाई महाकाल रहाओ, कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै इहु विचार। राग राम कली महल्ला पंजवा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार पुकार है ना तू मन है, खट पिए का बात बखान है, दस अष्टी मिल एको कहया, तापी जोगी भेद न लहया, किंकुरी अनूप वाजै, जोगिया मतवारो रे रहा, प्रथमे वसया सत का खेड़ा, तृतीय मह किछ भया दुतेड़ा, द्वितीया अर्ध अर्ध समाया, एक रहया ता एक दिखाया, एक सूत परोए मणिए, गाठी भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न तनिए, फिरती माला बहु विध पाए, खिंचिया सूत ता आई थाए, चहु मैं एक मठ है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल घर पाया, इं किंकुरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै, रहा ओ दूजा। राम कली महल्ला पंजवा, तागा करकै लाई थिगली, लाओ नाड़ी सुआ है अस्ति, अंबे काकर डंडा धरिया, क्या तू जोगी गर्भ है परिया,

लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा धारी, मागह टूका तृप्त न पावे, नाथ छोड़ जच है लाज न आवै, चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवै जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रहरास हमारी गुर गोपाला, ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर,

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कह रहाउ। बिन हर सगल निरार्थ काम, सोइना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सूखा, ईहा ऊहा तेरो उजल मुखा, ईहा ऊहा तेरो उजल मुखा, गुर का शब्द जाप मन सुखा, ईहा ऊहा तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे, किन ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए, ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान, राम कली महल्ला पंजवां। सिंचे दर्ब देहे दुख लोग, तेरे काज नयवरा जोग, कर अहंकार हुए वर्ते अंध, जम की जेवड़ी तू आगे बंद, छाड़ बिडानी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े, माया की माते तय उठ चलना, राज रहो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, तृतीया व्यवस्था सिंचे माए, बिरद भया छोड़ चले हो पछताए, चिरंकाल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुगते बुरी, किसे न बूझे जिन एसरी, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छड़ावहु छुटके बंद, बक्स मिलावहु नानक जग अंध, राम कली महल्ला पंजवां। कर संजोग बनाई काच, तिस संग रहो या नाराच, प्रत पारे नित सार सुमारे, अंत की बार ऊट सिधारे, नाम बिना सब झूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, ते सब माया मूठ परानी रहाओ। तीर्थ नहाए न उतर समैल, कर्म धर्म सब हो मैं फैल, लोक पचारे गत नहीं होए, नाम बिहूने चल सह रोए, बिन हर नाम न टूट सपटल, सोते शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपै जिस आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, राखन हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुम रह हाथ, जित लाभ है तित लाग है स्वामी, नानक साहिब अंतर जामी, राम कली महल्ला पंजवां। जो किच करे सुई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहेले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन मेहमानी, महापुरख का संग भया रहा। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जय राखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जह साध पग धर है, तह बैकुंठ जह नाम उचर है, सर्व आनंद जब दर्शन पाई है, राम गुणा नित नित हर गाई है, आपे घट घट रहा व्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे, नानक कौ गुरु भेटे पूरे, राम कली महल्ला पंजवां। कोट जाप ताप विश्राम, रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनिक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमख हृदय वसै,
हर के नाम की वडियाई, कीमत कह न जाई रहाओ। सूर वीर धीरज मत पूरा, सहज समाद तुन गहर गंभीरा। सदा मुकत ताके पूरे काम, जाके हृदय वसै हर नाम। सगल सुख आनंद अरोग, समदर्शी पूर्ण निरजोग। आए न जाए डोले कत नाही, जाके नाम बसै मन बाही। दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरै चिंद। नानक कौ गुर दिया नाम,

लाग, जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै, भौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याय मन अटल, ता छूट है माया के पटल।

बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियानब बहु चतुराई, मन बिन हर नावै जाय नकाई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टिकाई, राम कली महल्ला पंजवा, संत कै संग राम रंग खेल, आगै जम स्यों हुए न मेल, अहंग बुद्ध का भया विनाश, दुर्मत होई सगली नास, राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म कांड अहंकार न काजै, कुशल सेती घर जाहे पंडित, रहाउ हर का जस निद लिया लाभ, पूर्ण भये मनोरथ साब, दुख नाठा सुख घर मह आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया।

मन पूरा पाए, फिर मांगन का ही जाए। हर की कथा सुनत पवित, जिहवा बकत पाई गत मित, जिहवा बकत पाई गत मत, सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन ऊतम भाई। राम कली महला पंजवा, कहो कर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई, तब अहो तब ओह चरणी आए पई, सुन संत हो निर्मल बेचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा भेटत उदार रहाओ। जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान, जब उसको कोई मन पर हरे, तब वह सेवक सेवा करे, मुख भेरावे अंत ठगावे, इक तठोर वह कहीं ना समावे, इक तठोर वह कहीं ना समावे, उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी की नी खंड खंड, जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु न लहे, इस त्याग सत संगत करे, वडभागी नानक उतरे, जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु न लहे, इस त्याग सत संगत करे, वडभागी नानक उतरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका निता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण करदे हो, नाल करदे हो। गुरु कृपा करे सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके निवाजन जी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां नूं परिवारां नूं सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालु सतगुरु बख्शी योग ने भुलाना चितार दे प्यार सतफती गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

करो कृपा एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत वड्डा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना, असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाने वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिर होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्र जी सिंह जी खालसा जी, वो भी पहुंच चुके हैं दासियों के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चाहिए।